0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 47 702 V 23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी। बिल्कुल ना भूलिया जे, लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111। तंदूरी बॉयज।
3: मैनूं पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहणी लगदी है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह दी क्रिटिकल इलनेस दा हो जाओ शिकार, ता कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नूं, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नूं 6474461616। उमरप्रीत चावला

आपको अपने आँख चेक करवानी है, आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेस, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए आपको को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5333 पर कॉल कीजिए 905-456-2733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।

शूनाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्य कवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्य पदवीं लभेत्।

0: ततश्च कुङ्कुमस्य समध्युतिः ज्ञानमो सर्व कुकुमा कचतुर्भुजान् कदापाणि
1: वरकुल फेर अपने टेस्ट भी कर लगे हैं दिल कर रहे हैं ताली का सिद्ध कर लगे हैं।

0: सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, होटल ब्रैंटन, टेलीफोन 905-799-9400।
1: श्री विचित्र वीर हनुमन माला मंत्र श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र भगवान ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री विचित्र वीर हनुमान देवता ममाभीष्ट सिद्धारथि नारा मंत्र जपे विनियोगा अद करन्यास। ओम राम अमुष्टाजाम नमः। ओम रीम तर्जनीजाम नमः। ओम रूम मध्यमाभ्याम नमः। ओम रईम अनामिकाभ्याम नमः। ओम रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम रह कर कर कर्तिष्ठाभ्याम नमः। अद अंगन्यासः। ओम राम हृदयाय नमः। ओम रीम शिरसे स्वाहा। ओम रौं शिखायै वशतः। ओम रईं कवचाय हुम।

फादर्स डे के लिए शॉपिंग करिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर, और फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-795-0045-7999-0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045। तो अब अगर आपने सोने के गहने, सोने की बार्स, शादी एनिवर्सरी बर्थडे ब्राइडल सेट चाहिए, डिजिटल गहने चाहिए, डायमंड अप टू 70% ऑफ चाहिए, फादर्स डे के लिए गिफ्ट चाहिए, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स एयरपोर्ट रोड पे मॉल्टर में मौजूद है, वहाँ पे जाइए, स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए। और जानकारी के लिए आप अल मदीना ज्वेलर्स को 905-673-0100 पर कॉल कीजिए, 905-673-0100 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो आप जरूर हमें कॉल कीजिए 647-773-7640। और मैं पहले ही कह दूं कि अगर आप इतना अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और जो बहन भाई हमें मैसेज करते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, सुनते हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आइए अब जब प्यार गर्दिश में आ जाता है तो फिर इस तरह की गाने निकलती हैं।

0: करते हो साथ तेरे बना हूँ मेरा जल की धारा।
1: जी हाँ, क्या बात है, मेरा नाम जल की धारा है, प्यार कंपेयर कर लिया जल की धारा के साथ, तो आइए इसी जल की धारा के साथ बहते बहते आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया गीत आपको सुनाते हैं, मनोरंजन करते हैं आपका। जी हाँ, तो जो पहले वाले गाने पुराने वाले गाने थे उनका अंदाज अपना था, पर उनकी जो कोरियोग्राफी थी कमाल की थी, और पुरानी फिल्मों में

आपको नजर आते हैं कि घर कैसे होते थे, लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनके स्टाइल, लाइफस्टाइल, बहुत कुछ आपको देखने को उसमें सिर्फ गाना ही नहीं मिलता है, ये भी चीजें आपको देखने को मिलती, क्योंकि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस तो वो फैशन वाले ही कपड़े पहनती थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेके, आप तो मजा लीजिएगा। अगर आप मूव हो रहे हो तो आपके लिए मदद करते हैं एचके मूवर्स कनाडा भर में, और उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए, 416-524-8004, 416-524-6704, एचके मूवर्स। तो अपने घर खरीदना बेचना है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो किचनर वाटरलू गल्फ में आप नसीब सिंह को कॉल कीजिए 519-546-1260, 519-546-1260। और न्यू इंडिया स्वीट्स है रेस्टोरेंट आपके लिए, ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है। लाइव कुकिंग करवानी है, आपने किसी तरह का भी खाना ऑर्डर करना है तो आप उनको कॉल कीजिए 905-814-1703, 905-814-1730। तो अब मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में, आप आपके लिए लोकेटेड है। तो आपने किसी किस्म की भी, आपको लंदन के आसपास के इलाके में रहते हो, आपको कोलिजन का काम करवाना है, तो आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जा सकते हो। तो गौर रोड लंदन में उनका गैराज है, तो आप वहाँ पे जाके उनके साथ बात कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए रिची, आपके लिए बढ़िया सा, आपके लिए सेवाएं देते हैं। तो आप रिची को कॉल कीजिएगा, और मास्टर कोरियन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। तो अब अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेना है, या फिर आपने किसी किस्म की भी, आपको आपने नया टीवी लेना है, किचन की गैजेट्स, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यूज, न्यू स्टाइल बारबेक्यूज, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट में मौजूद है। तो उनकी दो लोकेशन है आपके लिए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड, दूसरी लोकेशन ग्वालकनी। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी फादर्स डे स्पेशल देखिए, और फिर आप अपने ऑर्डर बुक करिए फादर्स डे के लिए 905-799-0045, 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। ये ससुराल फिल्म था, महमूद के ऊपर फिल्माया गया था। तो

कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो हम दूर रहे, पास रह कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे।

महमूद के साथ उनकी हीरोइन बन के आती थी शोभा कोटे, तो बहुत था म्यूजिक तो आइए इसी तरह आपको बढ़िया बढ़िया गाने सुनाते रहेंगे। और किसी किस्म की आपको तो ये जो गाना है ये भी आपके लिए पुराना सा गाना है, फिर आपको नए दौर में भी ले आएंगे। तो ये जो गाना है So let's go to this beautiful song, enjoy.

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप अगर आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आपके लिए लंदन में मास्टर कोलिजन डिपो मौजूद है वो रोड पे, और वहाँ पे आप जा सकते हो और अपना कोलिजन का काम करवा सकते हो। बहुत सालों का उनका तजर्बा है, तो masterkollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो। अब आपका जो समर है, आप बता सकते हो कि कैसे गुजर रहा है, क्या कर रहे हो, तो आप जरूर जरूर आप बता सकते हो, तो हमें आपके बहुत सारे लोगों की अतियाँ मिले हो रहे हैं बहुत सारे, और फिर आपके लिए बहुत सारे पिकनिक्स हो रही हैं, बहुत सारी कंपनीज पिकनिक हो रही हैं, बहुत सारी कम्युनिटी पिकनिक्स हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ आपके लिए बाहर घर से निकलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, दूसरे लोगों के साथ टाइम बिताने के लिए, अगर आप निकल सकते हो तो आप आइएगा। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल रोशन फिल्म।

0: दिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल
1: इन लहरों पर मन मेरा गरम फूल।
2: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अब अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज स्टोव वाशर लेना है, कभी भी आपको अपने घर के लिए किचनेट सेट करवानी है, आउटसाइड बारबेक्यू और डोर फर्नीचर चाहिए, वन ऑफ ए काइंड, बढ़िया प्राइस, बढ़िया क्वालिटी, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है, दूसरी लोकेशन क्वार्क में। और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-700-0045। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको
3: $10,000 in Canada on things like credit cards, payday loans or lines of credit, are your money?
2: So अब आपने किसी किस्म का भी आपको आपने आपको घर खरीदना है तो आप जाइएगा, आपको मदद करेंगे खुश वासिंग ब्रांच 416-670-1313। आपने मूविंग करनी है तो एच के मूवर्स आपके लिए तो कनाडा भर में मूव होने की मदद करते हैं, तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से मूव करवाते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए और अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4416-524-6-524-6704। तो अभी तक अगर आपने अपना टैक्स नहीं भरा है तो गुरप्रीत रोडे को आप कॉल कर लीजिए पर्सनल या बिजनेस 416-302-8-8-1-3-5। सो लेट्स गो टू दिस।

0: इश्क है आग का दरिया, तुम सोच समझ के उतरना। जिसमें हजारों तूफान आता नहीं है।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर से सर में। ये गाना आप जरूर देखिएगा, हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो महमूद शुभा खोटे को, बड़ी सुंदर है शुभा खोटे, इसमें बड़ी यंग है। तो उसको वो कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो, वो उसको ऐसे इशारे से कहता है, तो वो कहती है नहीं। फिर वो जब सिर हिलाती रहती है तो फिर वो ना ना में सिर हिलाना शुरू कर देता है, तो फिर वो हाँ हाँ में सिर हिलाना शुरू कर देती है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं हाँ कर रही हूँ। तो बड़ी मजेदार पुरानी मूवीज है, बड़ा बड़ा फनी है, बहुत ही मजेदार है। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। जिनके बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं और अभी ग्रेजुएशन होनी है बच्चों की, 8th grade की और बाकी के ग्रेड की, तो उन पेरेंट्स को मैं बहुत देती हूँ। तो अब इस गाने का मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका एक बार फिर से प्रोग्राम को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। देते हो अपना टाइम निकालते हो, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जब आप ये प्रोग्राम सुनते हो तो आपको बढ़िया बढ़िया गीत सुनाए जाएं, ताकि आपकी रूह को के लिए फीलिंग हो और आपको अच्छा लगे। जो है आप सुनते हो तो आपको बहुत बढ़िया ये गीत पेश कर रहे हैं, तो आप जरूर एंजॉय कीजिएगा इस गीत को। तो लेट दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग तो आप

0: रंग रेडियो प्रोग्राम पंजाबी रंग हनेरी नू चानन दे रंगा नाल रुशनांदा पंजाब पंजाबियत दे रंगा दी मैका नू वंडदा रेडियो प्रोग्राम पंजाबी रंग
1: सुनना जरूर हर शनिवार रात 11 बजे तो 12 बजे तक 530 AM ते अपने होस्ट चमकौर सिंह दे नाल।

0: हाँ जी, जरा एक वेबसाइट नोट करो, afcgrocery.com। ए है जी एशियन फूड सेंटर दी ब्रांड न्यू वेबसाइट, जित्थों तुसीं इंडो कैनेडियन ग्रोसरी, मठियाईयां, ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, इंडिया वाले भांडे, सजावट का समान, सारा कुछ जो स्टोर ते जाके देखना। हुण एशियन फूड सेंटर दी इस वेबसाइट ते देखो, $100 या इस तो ज्यादा दे ऑर्डर ते पाओ फ्री डिलीवरी इन ऑल GTA एरियाज, फ्री कर्बसाइड पिकअप अवेलेबल इन ऑल लोकेशंस ऑन सेम डे। विजिट afcgrocery.com।
1: ब्रैम्पटन दे विच इक्को एक नाम, नंबर 9 ऑटो सेल्स, पिछले 35 सालां तो किसी भी तरह दी इंपोर्टेड डोमेस्टिक हाइब्रिड कार, SUV, वैन नू बेस्ट प्राइस ते बाय करन लई और ग्रेट सर्विस लई कॉल करो 905-450-0009, यानी 905-450-0009, या विजिट करो साडी वेबसाइट 9autosales.ca।
0: कनेडा विच 75 प्लस लोकेशंस दे नाल पिज़्ज़ा डिपो लेके आया फुल ऑन टेस्ट दा कॉम्बो, 50 प्लस टॉपिंग्स दे नाल बनाओ अपना फेवरेट पिज़्ज़ा, ट्राई करो स्वीट चिली मैंगो पिज़्ज़ा या शाही पनीर पिज़्ज़ा,
2: जूसी अते स्पाइसी विंग्स 25 फ्लेवर्स दे विच अते इंडियन स्टाइल चिकन विंग्स भी ट्राई करो,
0: लोडेड फ्राइज नाल बटर चिकन फ्राइज, शाही पनीर फ्राइज, मतलब हर बाइट विच फुल पैसा वसूल। अपने नजदीकी स्टोर ते जाओ या pizzadepot.ca ते ऑर्डर करो।
2: ते जे तुसी बिजनेस करना है ते फ्रेंचाइजी @pizzadepot.ca ते आज ही अप्लाई करो। पिज़्ज़ा डिपो, स्वाद विच टॉपिंग्स नॉनस्टॉप।

0: घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की,
1: यहाँ ये
0: स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA. चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर. विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर. 9057900560. स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट, ब्रैम्पटन.
2: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
3: HK Movers,
2: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
3: For service with a smile, give us a call.
2: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
3: 416-524-6704.
2: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
4: Long distance moving specialist,
2: HK Movers.
5: HK Movers.
6: Oh, ha, bhai. अब बड़ी हाईवे ते डोर भोरी होई खड़ी है, की गल
7: आ? एक्सीडेंट हो गया कार दा, टो ट्रक है, इनू फोन कर लगी आ.
6: ओ टो ट्रक छड्ड, मैं सीधा करदा स्काईडोम ऑटो एंड बॉडी सेंटर वालेयां नू, नाले मैं ट्रक दा बॉडी वर्क भी कराउण जाणा उत्ते.
7: आहो, मैं सुनया स्काईडोम वाले सारी इंश्योरेंस कंपनियां नाल डील कर दिया, नाल ही हुण मेरी कार दा मिशन टेस्ट करा दो, ने नवे टायर पवा दियो, उधरों ब्यूटी पार्लर ले जाणा, उधरों कार दा पंगा. आ छेती करो, स्काईडोम वालेयां नू फोन करो 905-874-9878.
6: भाई घर वाली ब्यूटी पार्लर तो निकली होवे ते कार स्काई
8: चलो AM 530 ते पंजाबी रंग रेडियो प्रोग्राम नूं सुन जा रहे सारे श्रोतियां दा चमकौर सिंह नूं निघा स्वागत. मेरे वल्लों सारे ही भैन भरावां नूं प्यार भरी सति श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब. दोस्तों, इस समय जो जुड़ चुके हो पंजाबी रंग रेडियो प्रोग्राम के नाल, जो कि प्रोग्राम थोड़े लिए हरेक शनिचरवार की रात को 11 तो लैके 12 बजे तक पेश किया जाता. सो थोड़ा सारा का हार्दिक स्वागत करते हैं असी. सो मैं पूरी उम्मीद है कि वीकेंड को पूरा तुम इंजॉय कर रहे होवोगे, मौसम बड़ा वधिया, सेफ ड्राइव जिथे बाहर अंदर जाते हो. सो थोड़ा साडा साथ ठीक 12 बजे तक रहेगा. साडे स्पोंसर दे संदेश, कुछ गीत संगीत भी होएगा. जिमें कि दोस्तों आप सारे ही जानते हैं कि यह जरा हफ्ता है घलूकारा, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिन्होंने आप साका नीला तारा भी कह दें, यह हफ्ता चल रहा. सो असी जिन्हें भी शहीद होए ने, सिंह सिंघणियां, दरबार साहब से अकाल साहब के जो हमले होए सन 1984, 42 साल हो चुके ने उस समय की जालम सरकार ने जो ये हमले किए ने. सो असी उन्होंने याद करते हैं जिहड़े शहीद होए ने शहीदां नूं, क्योंकि ये आपां नूं कदे वी नहीं भुलना अपनी जिंदगी दे विच. इन्ना चिर आपां जिउंदे आ, 42 साल हो चुके ने, कोई है नहीं कोई हिसाब किताब, किसी गौरमेंट ने नहीं कुछ किया. सो ये जो दिन आउंदे आ तां बड़ा वधिया जाने दी कि हार्ड हुंदा इस तरह का गलबात करनी, हमेशा ही याद करते हैं आपां. सो कुछ अपने गीत इस तरह के होणगे अज प्रोग्राम दे विच, हल्का फुल्का अपना संगीत रखांगे. आओ आप सारे अरदास करिए, सारे सिंह जो सिंह शहीद होए ने, बच्चे परिवारों के परिवार चले गए ने, आओ उन्होंने याद करते हुए असी उन्होंने सारे कोट कोट प्रणाम कहते हाँ. रेडियो प्रोग्राम पंजाबी रंग साडे स्पोंसर के संदेश ने, वो भी थोड़े सांझे किए जाएंगे लाइव. सुनते तुसी रहना, तुसी भी साडे नाल सांझ पा सकते हो. नंबर ने स्टूडियो का 905-673-3337, 905-673-3337 ते थोड़ी साडी गलबात हो सकती है. तुसी सानू लोकल सुनना है फोन राही, तो नंबर है बड़ा सौखा जहा 416-477-2040, 416-477-2040, जां AM 530 की ऐप लोड जी आप करके तुसी ए सुन सकते हो ऐप ते भी प्रोग्राम. USA चो सुनना है तो नंबर है 641-741-0860. इस समय जो टैंपरेचर है मिसागा दे विच, पीयरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नेड़े सारा स्टूडियो है, 21 डिग्री आ फील कर रहे हैं, 23 डिग्री क्लीयर स्काई दे नाल. कल जिहड़ा संडे दा टैंपरेचर होएगा वध तो वध होएगा 26 डिग्री, तो घट तो घट 15 डिग्री. तो नैक्सट वीक कुछ बारिश भी होएगी 2-3 दिन ट्यूजडे तो बाद. इस तरह मौसम चल रहे हैं, बाहर अंदर कितने भी जाओ अपना जरूर ख्याल रख्या करो. सो आओ आपां शहीदां नूं याद करते हुए जो अटैक होए सन अकाल तख्त साहब ते दरबार साहब ते, कुछ थोड़े नाल ए तुहानू सुनाउने गीत. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਪ੍ਰੋਮੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। RDSP ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਬਿਲਟੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਪਲੈਨ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 90,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸਿੱਧੀ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ 416-910-9000 416-910-9000 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਿਸਬਿਲਟੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਪਲੈਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 90,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਟੂ ਕਾਲ 416-910-9000 416-910-9000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਮੋਰਗੇਜ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਰਗੇਜ ਜੋ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਓਨਡ ਆਪਰੇਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਰਿਨਿਊਵਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਈ ਨਿਊ ਕਮਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਮੋਰਗੇਜ 'ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ ਹੈ 905-226-9919 9052269119 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਮਾਸਟਰ .ca ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਵਰੇਜ ਮਾਸਟਰ .ca ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡਿਸਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਹੈਲਥ, ਡੈਂਟਲ, ਟਰੈਵਲ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RSP, TFSA, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-427-6565 416-427-6565 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ, ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੀਤ, ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਬਾਈ ਜਸਵੀਰ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੇ ਬਿੱਟਾ ਸਵਾਲ ਸਕਾਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ 905-673-3333, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 416-662-1313। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬਿਓ ਸੱਜਿਓ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਿਘਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰ, ਉਬਰ, ਲਿਫਟ ਵਗੈਰਾ, ਕੈਬ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਲਓ ਸੁਣੀਏ ਇਹ ਗੀਤ।

छान चीटी से बोलो सफर के बाद बोलो संत में दुख पाए दुखी सब पाए साथ सुखी एक देख की तेरे छान।

आपको अपने आप चेक करवानी है आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेस, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए Alpha Optical, your vision is your business.

0: ॐ स्तुतिकरणं परात्पराय नमः ॐ वनमालिने नमः ॐ यज्ञरूपाय नमः ॐ चक्रपाणये नमः ॐ गदाधराय नमः ॐ कुबेराय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ नमः
1: अस्य श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य योगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता घृणीये बीजं सूर्यगुं शक्ति

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए और बड़ा मौसम बहुत अच्छा है, तो आप एंजॉय कीजिएगा। अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है, टीवी बढ़िया क्वालिटी का लेना है, किचन की गैजेट्स एडवांस बढ़िया क्वालिटी की, और आउटडोर फर्नीचर और बारबेक्यू चाहिए, तो आप जाइए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, फादर्स डे के लिए शॉपिंग करिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर, और फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045-799-0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045। तो अब अगर आपने सोने के गहने, सोने की बार, शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे, ब्राइडल सेट चाहिए, डिजिटल गहने चाहिए, डायमंड अप टू 70% ऑफ चाहिए, फादर्स डे के लिए गिफ्ट चाहिए, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स एयरपोर्ट रोड पे मॉल्टन में मौजूद है, वहाँ पे जाइए, स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए। और जानकारी के लिए आप अल मदीना ज्वेलर्स को 905-673-0100 पर कॉल कीजिए, 905-673-0100 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो आप जरूर हमें कॉल कीजिए 647-773-7640। और मैं पहले ही कह दूं कि अगर आप इतना अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और जो बहन भाई हमें मैसेज करते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, सुनते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आइए, अब जब प्यार गर्दिश में आ जाता है तो फिर इस तरह की गाने निकलती हैं।

0: जन्म जन्म शिव साथ तेरे बना हूँ मेरा जल की धारा।
1: जी हाँ, क्या बात है, मेरा नाम जल की धारा है, प्यार से मैंने उन्हें कंपेयर कर लिया जल की धारा के साथ। तो आइए इसी जल की धारा के साथ बहते बहते आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया गीत आपको सुनाते हैं, मनोरंजन करते हैं आपका। जी हाँ, तो जो पहले वाले गाने, पुराने वाले गाने थे, उनका अंदाज अपना था, पर उनकी जो कोरियोग्राफी थी कमाल की थी। और पुरानी फिल्मों में आपको नजर आते हैं कि घर कैसे होते थे, लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनके स्टाइल, लाइफस्टाइल, बहुत कुछ आपको देखने को उसमें, सिर्फ गाना ही नहीं मिलता है, ये भी चीजें आपको देखने को मिलती, क्योंकि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस तो वो फैशन वाले ही कपड़े पहनती थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेके, आप तो मजा लीजिएगा। सो अगर आप मूव हो रहे हो तो आपके लिए मदद करते हैं आज के मूवर्स कनाडा भर में, और उनकी बहुत सारी टीम्स हैं आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना टक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 4016524 HK मूवर्स। तो अपने घर खरीदना बेचना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो किचनर वाटरलू गल्फ में आप निसीब फिल्ड को कॉल कीजिए 519-546-1260। और न्यू इंडिया स्वीट्स है रेस्टोरेंट आपके लिए, ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मजबूत है। लाइव कुकिंग करवानी है आपने, किसी तरह का भी खाना ऑर्डर करना है तो आप उनको कॉल कीजिए 905-814-1730-5-814-1730। तो अब मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में, अब आपके लिए लोकेटेड है। तो आपने किसी किस्म की भी, आपको लंदन के आसपास के इलाके में रहते हो, आपको कोलिजन का काम करवाना है, तो आप मास्टर कोलिजन .com पर जा सकते हो। तो गोर रोड लंदन में उनका गैराज है, तो आप वहाँ पे जाके उनके साथ बात कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए रिची, आपके लिए बढ़िया सा आपके लिए सेवाएं देते हैं। तो आप रिची को कॉल कीजिएगा और मास्टर कोलिजन .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। तो अब अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेना है, या फिर आपने किसी किस्म की भी, आपको आपने नया टीवी लेना है, किचन की गैजेट्स, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यूज, न्यू स्टाइल बारबेक्यूज, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट में मौजूद है। तो उनकी दो लोकेशन है आपके लिए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड, दूसरी लोकेशन ग्वालियर में। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी फादर्स डे स्पेशल देखिए और फिर आप अपने ऑर्डर बुक करिए फादर्स डे के लिए 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। ये ससुराल फिल्म था, महमूद के ऊपर फिल्माया गया था।

रह कर भी बहुत दूर बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो हम दूर रहे, पास रह कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर

महमूद के साथ उनकी हीरोइन बन के आती थी शोभा कोटे, तो बहुत था म्यूजिक तो आइए इसी तरह आपको बढ़िया बढ़िया गाने सुनाते रहेंगे। किसी किस्म की आपको तो ये जो गाना है ये भी आपके लिए पुराना सा गाना है, तो फिर आपको नए दौर में भी ले आएंगे। तो ये जो गाना है So let's go to this beautiful song, enjoy.

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप अगर आपको किसी तरह का आपका भी कोलेजन का काम करवाना है तो लंदन तो आपके लिए लंदन में मास्टर कोलेजन डिपो मौजूद है वो रोड पे, और वहाँ पे आप जा सकते हो और अपना कोलेजन का काम करवा सकते हो। बहुत सालों का उनका तजर्बा है, तो masterkollegiandepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो। अब आपका जो समर है, आप बता सकते हो कि कैसे गुजर रहा है, क्या कर रहे हो, तो आप जरूर जरूर आप बता सकते हो, तो हमें आपके बहुत सारे लोगों की अतियाँ मेले हो रहे हैं बहुत सारे, और फिर आपके लिए बहुत सारे पिकनिक्स हो रही हैं, बहुत सारी कंपनीज पिकनिक हो रही हैं, बहुत सारी कम्युनिटी पिकनिक्स हो रही है, तो कुछ ना कुछ आपके लिए बाहर घर से निकलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, दूसरे लोगों के साथ टाइम बिताने के लिए अगर आप निकल सकते हो तो आप आइएगा। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल। रोशन फिल्म।

0: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अब अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज, स्टोव, वॉशर ड्रायर लेना है, कभी भी आपको अपने घर के लिए किचनेट सेट करवानी है, ऑफसाइड बारबेक्यू और टोर फर्नीचर चाहिए, वन ऑफ ए काइंड, बढ़िया प्राइस, बढ़िया क्वालिटी, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है, दूसरी लोकेशन वर्क में। और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी, आपको
1: $10,000 in Canada on things like credit cards, payday loans, or lines of credit, or your money.
0: So, अब आपने किसी किस्म का भी, आपको आपने आपको घर खरीदना है, तो आप जाइएगा, आपको मदद करेंगे खुशवासी ब्रांच 416-670-1313। आपने मूविंग करनी है तो HK मूवर्स आपके लिए तो कनाडा भर में मूव होने की मदद करते हैं, तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से मूव करवाते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए और अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4416-527-04। तो अभी तक अगर आपने अपना टैक्स नहीं भरा है तो गुरप्रीत रोडे को आप कॉल कर लीजिए, पर्सनल या बिजनेस 416-302-8135। सो लेट्स गो टू दिस।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर से साल में। ये गाना आप जरूर देखिएगा, हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो महमूद शुभा खोटे को, बड़ी सुंदर है शुभा खोटे, इसमें बड़ी यंग है, तो उसको कहते हैं तुम मुझसे प्यार करती हो, वो उसको ऐसे इशारे से कहता है, तो वो कहती है नहीं। फिर वो जब सिर हिलाती रहती है तो फिर वो ना ना में सिर हिलाना शुरू कर देता है, तो फिर वो हाँ हाँ में सिर हिलाना शुरू कर देती है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं हाँ कर रही हूँ। तो बड़ी मजेदार पुरानी मूवीज है, बड़ा बड़ा फनी है, बहुत ही मजेदार है। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। जिनके बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं और अभी ग्रेजुएशन होनी है बच्चों की, 8th grade की और बाकी के ग्रेड की, तो उन पेरेंट्स को मैं बहुत देती हूँ। तो अब इसने क्या है, आपसे विदा लेती हूँ। आपका एक बार फिर से प्रोग्राम को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद देती हो, अपना टाइम निकालते हो, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जब आप ये प्रोग्राम सुनते हो तो आपको बढ़िया बढ़िया गीत सुनाए जाएं, ताकि आपकी रूह को के लिए फीलिंग हो और आपको अच्छा लगे जो है आप सुनते हो, तो आपको बहुत बढ़िया। जो आप ये गीत पेश कर रहे हैं तो आप जरूर एंजॉय कीजिएगा इस गीत को। तो लेट दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग तो आप

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: Garnishment, power of sale notice, bank walon paise di mang, bade hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikiyan nikiyan kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416 502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
4: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया, क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे मरीना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
5: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com। Helping you to fulfill your real estate plans.
6: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974-0018-12 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: Shakiri.
1: जी मैं दोबारा से आई हूँ भाई, वो आप इसका रखें एवरग्रीन रेडियो,
0: रेडियो एवरग्रीन,
1: हाँ जी, और ये भी रख सकते हैं सदाबहार रेडियो,
0: हाँ पंजाबी तो सदाबहार है ना,
1: और रिम जिम रेडियो,
0: रिम जिम सदाबहार मैनू ज्यादा वधिया लग रहा है इन्हां दे विचों, ते बाकी देखते हैं हजे होर जिहड़ियां सजेशन लैने
1: हैं। मेरा नाम वैसे आफिया खान है, शकील खान मेरे हस्बैंड का नाम।
0: अच्छा जी, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू भाई,
0: शुक्रिया जी, बाय। सो स्टूडियो नंबर है जी 416 233 73

0: है।
1: चलो बहुत अच्छा ही
0: तो
1: बात
0: एक
1: है,
0: तो है रेडियो संगम,
1: संगम। ओके
0: हाँ जी, दूसरा जो है पंजाबी वॉइस कनाडा,
1: पंजाबी,
0: वॉइस,
1: ओके कनाडा।
0: और तीसरा ऐसा है मैंने सोचा है मेपल पंजाबी रेडियो,
1: मेपल
0: और रेडियो
1: पंजाबी
0: मेपल
1: रेडियो,
0: पंजाब।
1: संगम मैनू ज्यादा वधिया लग रहा
0: हाँ जी,
1: ते दूजे नालों। बाकी देखते हैं, हजे स्टिल दो अपने को 20 मिनट का समा हैगा, देखते हैं जो कोई
0: ओके
1: होर सजेशन भी आता। बट धन्यवाद जी, ताडा शुभ नाम
0: महेश।
1: महेश। शुक्रिया भाई जी, की
0: हाँ
1: काम
0: जी,
1: काज करते हैं भाई?
0: बाद में दसूंगा मैं।
1: ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। सो मैं लगता हूँ रेडियो नाम लैन का टाइम आ ही गया। चलो हजे वेट कर दिया, 10-15 मिनट होर समा हैगा। तुसी अपना सजेशन सबमिट करना चाहते हो तो स्टूडियो का नंबर है 416-233-7368, 416-233-7368। तो बड़ा जल्दी असी नागपाल जी नाल गलबात करांगे यूनी ग्लोबल तो। इस तो पहला ग्रैंड होम फर्नीचर के नंबर साझा कर लो जी। तुसी फर्नीचर लेना $299 दे विच, क्वीन साइज का बैड विद मैट्रस मिलेगा, सोफा कम बैड $399 का, एंड इन्हां कोल होर बहुत सारिया डीलां ने। तुसी सोफा बैड मैट्रस डाइनिंग टेबल बाय करना चाहते हो तो 6085 टॉमकन रोड से वेट किया जा सकता, 6085 टॉमकन रोड, 6085 टॉमकन रोड से जिहड़ी गलबात की जा सकती है। इन्हां दा नंबर है 647-262-0000, 647-262-0000, 647-262-0000 ते गलबात ग्रैंड होम फर्नीचर ते की जा सकती है। नागपाल जी सत श्रीकाल जी, एंड वेलकम।
2: थैंक यू, सत श्रीकाल।
1: सो पहली चीज तो यह दसो, तुहानू तुसी दस्सिया सी कि यह स्कीम तो बहुत सालों तो आ, पर इहदे बारे तो सानू हुण जी पता लगन लगे, तुसी ही अवेयरनेस दिती आ, ते तुसी इन्नी अवेयरनेस ते क्यों जोर दिता जी?
2: हाँ जी, इसमें लाइक ऐसा यानी कि हम लोगों को अगर मैं बोलूं कि आज एक नया टैक्स लॉन्च हो गया गवर्नमेंट से, तो हमें लगेगा हाँ बिल्कुल सच्ची बात है, बट जब हम बोलते हैं गवर्नमेंट हेल्प करती है, असिस्ट करती है, हमें लगता है कुछ कैच होगा। देयर इज नो कैच इन इट। अब गवर्नमेंट फंडेड कोर्सेज करें, और गवर्नमेंट उन्हीं कोर्सेज को अप्रूव करती है उन्हीं कॉलेजेस में जो एक सर्टेन पैरामीटर पे खरे उतरते हैं। तो ये नहीं आज कोर्स शुरू करो कल आप गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर कर दिया, राइट? तो हमारे पास है लाइक 8 से 10 अच्छे कोर्स है, फुली ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप घर के कंफर्ट से पढ़ें, फुली ऑनलाइन कोर्सेज हैं, नो एज लिमिट, नो कैच, असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, आप स्किल डेवलप करते हैं, गवर्नमेंट आपको फीस पे करती है कॉलेज की डायरेक्टली, एंड देन ऑन अदर हैंड आपको आपके खाते में 30 से 100,000 की फंडिंग आती है, जिसका आज की डेट में हाफ पोर्शन इज नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स पोर्शन। हमारी फीस कितनी है जी? अब लगेगा आपको कि हमारी फीस में कुछ कैच है, देयर इज नो कैच। फीस है हमारी $199 से $499, तभी हम इतनी अवेयरनेस करते हैं। हमारी फीस ऑनेस्ट है जी, 7 ईयर से काम कर रहे हैं, इतनों को असिस्ट कर चुके हैं। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं पुराने एजेंट को 2500 दिया, 3000 दिया, और वो क्लाइंट्स आते ही रिटेन हो जाते हैं कि सर आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, देयर इज नो कैच इन इट। कल भी आपका शो सुन के क्लाइंट आए थे, फैमिली ऑफ टू में एक बंदे को पढ़ना चाहिए,
1: अच्छा,
2: तो अच्छी फंडिंग आती है, बट उन्होंने किसी और जेंट ने दोनों को एनरोल कर दिया। तो हमने उनको जब मैच करके दिखाया गवर्नमेंट कैलकुलेटर पे, जो आपको एक पढ़ने में भी इतने आ रहे हैं, दो पढ़ने में भी इतने आ रहे हैं, दोनों पढ़ते हैं, राइट? तो कहते हैं यार ये तुम्हें पता ही नहीं था, राइट? अब रिटेन हो गया हमसे, देयर इज नो कैच इन इट। एथिकली हम काम कर रहे हैं, आप आए कॉल करें, ऑफिस आए, 200 डिपार्टमेंट स्किल हासिल करें, साथ में हुकूमत से फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें, जैसे हमारे कितने ही क्लाइंट्स कर चुके हैं।
1: बहुत अच्छे, तो ये तुहाडी फीस किन्नी है, कदों तो तुहाडी फीस पे करनी है जी?
2: हाँ जी, एक तरफ लाइक आपके अकाउंट में हाथी जितनी फंडिंग आ रही है, बट हमारी फीस चीटी जितनी रहती है, क्योंकि हमारी फ्लैट फीस है, कोई परसेंटेज कमीशन नहीं है। क्यों नहीं है चलो बताओ। अब इसमें यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट से लगते हैं, नोटिस ऑफ असेसमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके बच्चे ज्यादा हैं, फैमिली ऑफ 5 है, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, आसान से कोर्स करते हैं, फुली ऑनलाइन वाले, उनको अप टू 100,000 की फंडिंग आती है, इसमें से $50,000 तो ग्रांट्स है, रेस्ट 50,000 ऑप्शनल लोन एट 0% है। फैमिली ऑफ 2 है तो 45,000 की फंडिंग आती है आज की रेट में, जिसमें से आधा पैसा क्या है, नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स पोर्शन। अब कागज सारे ऐसे असली लगते गवर्नमेंट पे, कागज पहले से ही है, बैंक थोड़ी आए यहाँ पे, गवर्नमेंट पे कागज पहले से ही है, एनओए, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई सेटिंग नहीं, कोई अप्रोच नहीं है, कोई कारीगरी नहीं है, फीस हमारी 199
1: लोन
2: काम होने के बाद
1: लोन ऑप्शनल होंगे ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀਆਰਏ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ

0: डिपार्टमेंट जो इसको मॉनिटर करता है दैट इज ESDC मतलब सर्विस कनाडा.
1: ओके.
0: एंड देन नोटिस ऑफ असेसमेंट इसमें लगता है जितनी आपकी इनकम कम है, PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन.
1: ये तो कोई क्रेडिट चेक होता है कोई उधर कोई इशू है क्या?
0: यहाँ पे गवर्नमेंट आपको एजुकेशन के लिए फंड कर रही है, दे आर मोर लीनियंट. आप स्किल डेवलप कर रहे हैं, आप स्किल हासिल कर रहे हैं, देयर इज नो क्रेडिट चेक इन दिस. नो एज लिमिट, 40, 50, 60, 70 साल के आप हैं, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. जब गवर्नमेंट $30 बिलियन यूक्रेन को दे देती है, मोजाम्बिक्यू, टेंजानिया, कॉन्गो, ऐसे करके मतलब 32 कंट्रीज है जिनको 154 मिलियन गवर्नमेंट ने दिया है फॉरन एड के नाम पे, तो गवर्नमेंट एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं कर सकती क्या? तो आप स्किल हासिल करें, हमारी फीस 199 काम होने के बाद है, आप हमारे ऑफिस आए. कोई कैच नहीं है इसके अंदर. जैसे गवर्नमेंट डेंटल केयर चाइल्ड बेनिफिट में देती है, वैसे गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट करती है. दो से तीन घंटे आपने देने, पूरा दिन नहीं लगाना जी.
1: तो
0: अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, आपको अच्छा बेनिफिट है, फंडिंग डायरेक्ट आपके खाते में आती, मेरे खाते में नहीं आती. कोई कैच नहीं है, ऑफिस आए, प्रॉपर ऑफिस है जी हमारा, 7 ईयर से बिजनेस में है, बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं.
1: नंबर चेक करिए, नंबर साझा कर दो.
0: हाँ जी, नंबर जी 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175. स्किल हासिल करें, 30 से 100,000 की फंडिंग हासिल करें. 1 अगस्त के बाद ग्रांट्स बंद हो रहे हैं, आज ही एनरोल करें, ग्रांट्स का फायदा उठाएं.
1: 437-264-3175 दोस्तों, सिर्फ लास्ट दो बैच बचे ने, ते आने वाले टाइम दे विच ग्रांट देनी बंद हो जो. सो तुसी ये स्नेहा सुन रहे सी इस टाइम टू एक्ट, कॉल करके इन्हां नाल वधेरे जानकारी लै लो. जे तुसी एलिजिबल हो, किन्ने पैसे आउणगे, इन्हां ने ओवर दा कॉल ही तुहानूं दस देना. 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175. बहुत शुक्रिया भाई जी, धन्यवाद.
0: थैंक यू.

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: साड़ी वक्री पहचान,
2: साड़ा वक्रा है नाम, साड़ी कर नहीं सकता कोई रीज।
1: कल्चर ऑफ पंजाब।

ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ। कल्चर ऑफ पंजाब आपको एंटरटेन भी करता है और आपको बिजनेस भी देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करे तो इस एंटरटेनमेंट सेगमेंट का हिस्सा बन जाइए। देव तातला को 416-677-0609 दैट्स 416-677-0609 पर कॉल करें और स्पेशल प्रमोशंस का फायदा उठाइए। भाई हम तो यही चाहेंगे कि हमारे आने वाले शोज में आपका बिजनेस भी शामिल हो। कल्चर ऑफ पंजाब बाय देव तातला।

तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं। गर वफाओं में सदाकत भी हो और शिद्दत भी, फिर तो एहसास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। उसकी आंखों के नशे में हम जब से डूबे, लड़खड़ाते हैं कदम और संभल जाते हैं। बेवफाई का मुझे जब भी ख्याल आता है, अश्क रुखसार पे आंखों से फिसल जाते हैं। प्यार में एक ही मौसम है बहारों का, पर कभी कभार यूं ही ख्याल आता है कि लोग मौसम की तरह कैसे बदल जाते हैं।

सुन रहे हैं कल्चर ऑफ पंजाब। एक्साइटिंग एडवर्टाइजिंग पैकेजेस के लिए कॉल कर सकते हैं 416-677-0609, 416-677-0609।

बार सदियां बीत जाती हैं उनको मिले उनको देखे हुए और मन यूं ही उदास खुद से पूछता है सोचता है कि मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था, उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था, उसकी जुल्फों से भीगती थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था, लोग पढ़ते थे रुक रुक कर उसे, वो अदब की किताब जैसा था, सारी आंखें थी आईने उसके, वो हकीकत था या किताब जैसा था। ये मगर देर की कहानी है, ये मगर देर का फसाना है, अब तो उसके और मेरे मिलाप के बीच सदियों भरा जमाना है। दिल बार बार खुद से पूछता है कि ना जाने इन दिनों वो कैसा होगा, क्योंकि मैंने देखा था सदियों पहले उसे।

जिन राहों से आप अक्सर गुजरते हैं वो रास्ते भी आपके इतने आदी हो जाते हैं कि अगर आप कुछ दिन वहाँ नहीं जाते तो वो भी उदास हो जाते हैं। फिर हैरान परेशान हुए पूछते हैं औरों से कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। समंदर पूछता है कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। वही दोनों जो भीगी रेत पर एक दूसरे का हाथ थामे दूर तक, कभी हंसते कभी कुछ गुनगुनाते या कभी चुपचाप बैठे दूर उफाक की गूंज में रोपोश होने वाले सूरज को देखते, आंसू बहाते और लौट जाते। समंदर पूछता है कि वो दोनों क्यों नहीं आते, पर समंदर बेखबर अनजान है एक सच्चाई से, और वो क्या है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस ट्रैक के बाद। व्हिच यू लिसन इन योर वेरी ओन शो कल्चर ऑफ पंजाब ब्रॉट टू यू बाय देवदातला।

0: ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मेरे नबजी, मेरा बिजनेस नीचे चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
2: ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਵ ਤਾਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਐਡ ਚਲਾ ਬਈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫੋਨ ਕਰ 416-677-0609 416-677-0609।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: You're listening to Culture of Punjab. For exciting advertising packages, call 416-677-0609. 416-677-0609.

0: 32, 55, 80, 93।
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
2: हो काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते,
2: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।

0: रब जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देव ताकले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई। स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

वेल, इसी के साथ मुझे यानी प्रीत को आज का शो कल्चर ऑफ पंजाब यही खत्म करने की इजाजत दें। बट फॉर एनी बिजनेस क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट देव तातला एट द नंबर 416-677-0609. With that, I sign off. Shall see you again very soon. Till then, goodbye, take care and keep smiling.

0: 530. CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM
1: 530.
2: 32, 55, 80.
1: 98. एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
2: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
4: Wakey, wakey, wakey, wakey.
5: Here's wake up time. Here's wake up time.
4: Now is the time to wake up.
0: Crank up the radio. You're listening to the Dave Todless Show, brought to you in part by Culture of

0: वेलकम टू डेव टावला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशा वादी उम्मीद करते हैं तुहाडा वीकेंड अच्छा गुजरिया होगा। साडी कोशिश रहेगी कि अगले एक घंटे विच तुहाडे ढेर सारे डालर की बचत करके दईए। सब तो पहला सुल्तान जी का धन्नवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम टू द शो सर।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
0: सुल्तान जी। ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस ते बहुत लंबे किन्ने फरे हो गए इस काम च?
1: 39 ईयर।
0: लो जी ऑलमोस्ट 40 साल का इस बिजनेस च। जिहड़ा पुराना बंदा हुंदा उहनूं इक तां नॉलेज पूरी हुंदी आ, इन एंड आउट दी पूरी नॉलेज आ। जिहड़े सेल्समैन रखणे आ, किहड़े रखणे आ, किहनां नूं किहड़ी ट्रेनिंग देणी आ, हर एक शय इहनां नूं पता है। लेकिन अज असी उस बारे नहीं गल करनी, अज एक्सपीरियंस 40 साल का हैगा, अज गल करनी आ टेलीविजन टेलीविजन ते टेलीविजन टेलीविजन ते।
1: ओदी रीजन ए आ जी के फीफा वर्ल्ड कप हो रहा, ते फीफा वर्ल्ड कप दे विच सैमसंग ने स्पोंसर कीता, ते सैमसंग चाहुंदा है कि मैक्सिमम बिग स्क्रीन टीवियां ते असी डिस्काउंट करिए ताकि कस्टमर्स जेड़े आ वड्डी स्क्रीन ते अपने घरां च बैठ के मैच देख सकन। और इहदे च एडवांटेज ये दिता जा रहा कि कोई 200 या 300 या 400 नहीं जी, 600 तो लाके 800 डालर दा डिस्काउंट है जे 85 इंच तक टीवी लेंदे हो।
0: अच्छा
1: जे टीवी लेंदे जी 98 इंच या 100 इंच या 115 इंच ते ओदे च तकरीबन मोर देन 1000 डॉलर दा डिस्काउंट है जेड़ा एस टाइम दिता जा रहा। जदों मैं कैलकुलेट करदा 40% दा डिस्काउंट बन जांदा, समवेयर इट्स मोर देन 40%। 85 इंच दा QLED क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसैसर दे नाल 85 इंच QLED हाई एंड टेक्नोलॉजी है, क्लीयर क्रिस्टल पिक्चर क्वालिटी है, $2000 वाला 1299 सैमसंग ने 1299 एक्सक्लूसिव डील दिती है बोवेड एंड चंकूजी वाली लोकेशन ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस नो। ब्रैम्पटन अपलायंसिस .com साडी वैबसाइट तो तुसी डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी लै सकदे, ते वॉक इन कस्टमर लई एडिशनल गिफ्ट्स जेड़े आ वह भी ताडा वेट कर रहे हैं। बिल्कुल 4 to 5 टीवी इन स्टॉक रह गए होंगे, जल्दी क्विक एक्ट करना है तुसी। बिग स्क्रीन टीवी नू जे होल्ड करना है मैक्सिमम डिस्काउंट दे नाल 1299 दा, अदरवाइज 1800 डॉलर तो घट अगे जाके टीवी नहीं मिलना।
0: 1299 दा टेलीविजन ले लो, 6 महीने पैसे देने की लोड़ नहीं, कोई ब्याज कोई इंटरस्ट नहीं लगना। जिस दिन तुसी टेलीविजन लेके गए घरे उस दिन तो यह पेमेंट सिस्टम चलना है। सो 6 महीने 1 सेंट देने की लोड़ नहीं।
1: ते कदी सोचिया होएगा कि 55 इंच टीवी तुहानू सिर्फ 399 दा मिले?
0: हां जी, ना ये सुपने हुंदे सी।
1: $800 दी प्राइस एज ऑफ टुडे भी जी।
0: अच्छा,
1: पर तुहानू 399 च 55 इंच मिल रहा। 65 इंच कदी सोचिया सी 699 दा मिले, एज ऑफ टुडे भी $1000 दी प्राइस है 699 दा मिल रहा। पर उन्नी देर ही मिलना जिनी देर स्टॉक अवेलेबल है, उस तो बाद इन्ने दा ही मिलना, $1000 $900 दा ही मिलना 65 इंच भी। पर आज दे दिन तुहानू 699 ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस तो मिलना, और 699 तुसी चाहो 6 महीने च पे करो, कोई इंटरेस्ट नहीं है।
0: अच्छा, जेड़ा 6 महीने च पे करो, हो सारा महीने दे महीने में थोड़ा थोड़ा करके?
1: हाँ जी, ईवन देखो भाजी गल है ना जी, तुसी $3000 तक की भी शॉपिंग करो ना।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: $500 महीना करके पे कर दो, 3000 पूरे हो गए।
0: सो जिन्ने भी शॉपिंग कर रहे हैं थोड़े थोड़े करके देने हैं, वो दे दो कट्ठे देने हो, तुहाडी इच्छा है। कोई ब्याज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, चाहे महीने महीने दे दो चाहे 6 महीने आज दे दो।
1: ईवन $2400 तक की भी शॉपिंग करो, $400 महीना करके दे दो, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए तो कहा कि बिग स्क्रीन टीवी $3500 वाला 98 इंच।
0: हाँ जी,
1: देखो किन्ने कंज्यूमर दी आम बजट च आ गया, $3500 तो सिर्फ 1999 दा।
0: हाँ जी,
1: ते 1999 भी 6 महीने च पे करना, थोड़े थोड़े करके पे कर दो।
0: तो बड़ा इजी इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है। तुसी 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी अपलायंस चक्कर लाओ, हाथ लागे दे लो। जेडे टीवी या टेलीविजन तुसी दस रहे हो ये ऑलरेडी उते डिस्प्ले ते हैगे?
1: डिस्प्ले ते भी है जी, और राइट वे स्टॉक च भी अवेलेबल है। 48 आवर च तुहाडी डिलीवरी स्केड्यूल हो जाएगी, बिल्कुल फ्री डिलीवरी है। बल्कि साडियां डिलीवरियां जेडियां हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक, नियाग्रा फॉल, वेलेंड एरिए च ऑलरेडी जा रही है। अगर तुसी राइट वे डिसीजन लेंदे हो तो तुहानू 48 आवर च डिलीवरी जेड़ी है इस एंड ते भी मिल जाएगी। ईवन क्योंकि हैमिल्टन आले पासे भी जाना है, ते मिल्टन ਤੇ ਓਕਵਿਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਓਕਵਿਲ, ਮਿਲਟਨ, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਸਟੋਨੀ ਕ੍ਰੀਕ, ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ, ਵੈਲੈਂਡ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੈਜੂਅਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 905-450-2828 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ, ਇਹ ਵਨ ਵਰਡ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੇਲ ਦਾ ਆਈਕੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੇਲ ਦਾ ਆਈਕੋਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਈ ਆਈਟਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ।
0: ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਬਚਤ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜੀ, 801 ਬੋਵੇਡ ਡਰਾਈਵ ਵੈਸਟ, ਜਸਟ ਈਸਟ ਆਫ ਚਿੰਕੂਜ਼ੀ ਔਨ ਬੋਵੇਡ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ, 905-450-2828, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ .com। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਵਾਕ ਇਨ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 905-450-2828, 905-450-2828।

0: श्रीकाल जी, पूछो की पूछना चाहते हो।
1: संदीप नाय जी,
0: ठीक है जी।
1: 31 जुलाई 1997 करते जी।
0: 31 जुलाई 1997। टाइम दसो जी, जन्म दा।
1: सवेरे 7 बजे।
0: 7 बजे सवेरे। एंड बर्थ प्लेस?
1: लुधियाना जी।
0: लुधियाना। की पूछना है जी तुसी?
1: मैडम काम ना दो तीन ने जी, ते समझ नहीं आ रहा भी केड़े पासे मतलब फिक्स हो जाइए। मेरा ट्रकिंग का भी काम है,
0: ठीक है,
1: ते विच कंस्ट्रक्शन का भी है, ते थोड़ा या मतलब फूड टाइप काम भी है अपना फूड का भी। पर एक जगह फोकस करना चाहना तिना काम, क्यों तीन बैलेंस नहीं होते है उदे नहीं।
0: ठीक है जी। तुहानू तुहाडी कुंडली दे हिसाब दे नाल क्लैरिटी दसदे आ कि तुसी किस फील्ड विच वधिया तुसी रिस्पोंड करोगे। ठीक है जी, तुसी ऑन एयर सवाल दा जवाब सुन सकदे हो, रेडियो ने सुनदे रहो जी।
2: जी बृहस्पति सतमें भाव दे विच बैठ के जीवन नू पंगूड़े दी तरह कर देंदा है, कदी उस पासे ते कदी उस पासे। ते दूसरा जिहड़ा कहिंदा सूरज ते केतु दी आमणे सामणे टक्कर हैगी है, कोशिश कीती जावे के ऐसे किसी काम नू कीता जावे जिस दे विच सिर्फ दिमाग ज्यादा यूज कीता जावे, मेहनत हत्थी घट कीती जावे। क्योंकि बृहस्पति सतवें भाव दे विच ये कहिंदा है कि अगर ज्यादा मेहनती होवोगे तो फल घट जाएगा। हुण बहुत सारे लोग इस गल दे उत्ते भी क्वेश्चन करनगे कि मेहनत तां सब नू करनी चाहीदी है, बस इत्थे सिर्फ फर्क इन्ना है कि मेहनत अगर दिमागी होवे तो ज्यादा वधिया फल देंदे है।
0: जी,
2: तुसी चंद्रमा का एक उपाय कर लो, 12वां भाव च बैठा हुआ चंद्रमा तुहाडे फाइनेंस नू जिहड़ा है वो डिस्टर्ब करता है, इसे करके ही तुसी अपने आप नू कदी किसे पासे भजांदे हो कदी किसे पासे भजांदे हो। अगर तुहाडा फाइनेंस इको ही काम चो सैट हो गया तो तुहानू बार बार भटकना नहीं पवेगा। करना की है कि बरसात का पानी इकट्ठा करके 1 लीटर जमीन तो थोड़ा जा उच्चा कोई बर्तन रख के इकट्ठा करना है, 4 ग्राम चौरस टुकड़ा चांदी का पा के उसनू घर दे विच रखो, तुहाडियां सारियां समस्यावां दा हल इसे उपाय नाल हो जाएगा।
0: जी 4402। पूछो की पूछना जी। 4402। जी पूछो जी, की पूछना चाहते हो? 4402। 9181 ऑन एयर हो जी तुसी।
3: हाँ जी, मैं नाम बोल रहा।
0: जी
3: मैं भी अपनी हेल्थ बारे ही पूछना।
0: हेल्थ बारे पूछना चाहते हो, ठीक है
3: तो
0: जी।
3: मैं कभी
0: डेट ऑफ
3: एक 8 साल हो गए, कभी एक प्रॉब्लम आती है दूसरी ठीक होंगी दूजी आ जाती है, कभी हार्ट दी आ जाती कभी कोई है,
0: ठीक है।
3: जो पूछने सही डेट ऑफ बर्थ हैगी है जनवरी 13 1966।
0: 13 जनवरी 1966। टाइम दसो जी।
3: टाइम का 2:30 PM इंडिया का।
0: इंडिया दे केड़े
3: जलंधर
0: केड़े जिले विच जी, केड़े शहर च?
3: जलंधर।
0: जलंधर दा, ठीक है जी। सेहत बारे पूछना चाहते हो, 13 जनवरी 1966 दा जन्म है जी, 2:30 PM, ठीक है जी।
2: लगन दे विच बैठा हुआ बृहस्पति अते राहु सूरज नू पूरन दृष्टि दे नाल देख रहा है, बृहस्पति बचा देंदा है ते जड़ा राहु सूरज नू समस्या देंदा है, यानी कि हार्ट नू समस्या देंदा है, बुध नाड़ियां दे विच ब्लॉकेज दिंदा है। राहु जदों भी बृहस्पति नाल हुंदा है ते साडा ब्लड अल्कलाइन दी जगह ते उत्ते एसिडिक हो जांदा है, इस करके साडे जीवन दे विच बहुत सारी समस्या हुंदी है। एक तां अपना फूड जिन्ना भी है उहनूं अल्कलाइन करन दी कोशिश कीती जावे, दूसरा एक गुरु चंडाल दोष दा उपाय जिहड़ा है वो जरूर कीता जावे। वो की कर सकदे हां? अपने वड वडेरिया दे नाम दे उत्ते दान कढ़िया जावे, जिन्ना भी दसवंद अपने वड वडेरे सिंह शहीद या जिन्ना दे नाम दे उत्ते तुसी मन्नदे हो या जिन्ना दे नाम ते दान कर सकदे हो अपने बजुर्गां दे नाम ते, वो जिन्ना करोगे उन्ना ही सेहत प्रति ठीक रहेगा
0: जी। 4842।
4: हां जी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी।
4: 16 अक्टूबर 1975,
0: ठीक है जी। टाइम
4: न्यू दिल्ली 2:30 बजे, 2:30 आफ्टरनून।
0: आफ्टरनून जी। 16 अक्टूबर 1975 न्यू दिल्ली, 2:30 PM।
4: हाँ जी हाँ
0: जी। की पूछना जी?
4: थोड़ा जॉब का ते ओवरऑल थोड़ा जा के दा दस दियो, ओवरऑल फैमिली।
0: ठीक है जी, जॉब एंड फ्यूचर दस दिए जी, प्रोग्राम नु सुनदे रहो
2: जी। कुंडली दे मुताबिक सप्तम भाव दे विच शनि जिहड़ा कि कदी ਜੌਬ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੂਥ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।